पिता को फल फूल आयुर्वेदिक खाना नियमित रूप में खाई, जंक फूड कम करी, संतुलित खाना रोजे, स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का ध्यान हो। रेडियो पूर्वाचल को सहकार्य स्वास्थ्य कार्यालय प्रतिवासी जनहित संदेश।

क्षेत्र में रही बनी पाई जारी दुलरियाकुट सात नंबर पास नंबर वा का किसान अर्षा को प्रतीक्षा में नगरपुर नगर पालिका

0: भरी अनाज घेरा गरी साग सब्जी फल फूल समेत पूरक खानाले बच्चाहरूलाई तन्दुरुस्त बनाए। पूरक खाना सँगसँग दुई वर्षसम्म स्थल पार्क जारी गरे।
1: स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख से जनहित में जारी संदेश।

0: It's not for not exam. Shared Sayyidina Hirakra, Khamraka, Ramdanika, Surtanki, Vazarabayu, Ismail, Krishi, Pitranka, Vishkar Karai, Antarashtri Sayyid, Arvasvetra, Ratmandri, Chakarika Kai. Pura Samachar, in the same.
1: भास्कर अब कार्यक्रम का न्यायिक समिति एक बरस 26 सितंबर को मध्य मध्य मस्जिद गया।

सारा विकास का जोड़ गर्दा तीव्र गति का कारण भेटा। उन्नाइस घटना बताए सोलह तीव्र गति का कारण भेट जना दुर्घटना से तीन ठाव दुर्घटना मानव पदार्थ सेवन वापस।

0: कार्यवाही करवाया था, वो कार्यवाही में से 8,11,000 रूपया राजस्व संग्रह रूपया पढ़ाई को पढ़ाई ध्यान दे दिया।
1: मानव पहचान के द्वंद न्यूनीकरण करना उद्देश्य ने कांके राष्ट्रीय निकुंज को मध्य प्रदेश क्षेत्र में चार गांव में पहचानों पर जानकारी देना प्रदर्शन प्रणाली सैन जान के निर्माण जेटीएस

विश्वनाथी पाठ कर पूर्व बापी सुनाई दुई कर पूर्व शहर प्रणाली चलान दुईजा को इले हटिया पकवा चितुआ मेलपोटी लगायत मैं चंतु वस्तु में प्रवेश कर शहर में सूचना दिख स्थानीय हम सतर्क भे सहज बनाता ताकि राष्ट्रीय निकुंज का मुख्य प्रमुख वीरेन्द्र कड़े परिचन जोखिम न्यूनीकरण का चार ठाव में पूर्व सूचना प्रणाली चलान दुई कर प्रसार में जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली के संचालन में चांद निकुंज तारबार मेचारी तथा छेगरी उपहार कर कार्यक्रम समेत संचालन निकुंज का मध्य प्रदेश क्षेत्र का उपरी चामा जाफरपुर मुजफ्फरपुर में पशु से जंगली हत्या लगाये अन्य जंतु का आक्रमण से मानवीय तथा अन्य बारी में छिटी हुई ज्ञान का मुजफ्फरपुर में हाथी सार केन्द्र का शालिग्राम यादव सायरन प्रणाली ने परिजंतु बस्ती में बैठी की सूचना देना तरफ से मानवीय छिटी न्यूनीकरण प्रभाव कार्यरत प्रक्रिया बाट हाल पाल के राष्ट्रीय निकुंज में दुख जंगली हत्या जंतु पश्चिम प्रवेश करने आज फिर पानी पुरा

0: लगी और माँ बिना बुझी साफ सब्जी फल फूल सहित का पोस्टर पूरा खाना है बच्चा खाना तंदुरुस्त बने पूरा खाना हम समुद्री जल संभव इस संस्था में क्या है खाइए
1: स्वास्थ्य कार्य कार्यालय प्रक्रिया से जनहित में कार्य संदेश।

देख पा रहे हैं ये प्रतिभागी बनाना सरकार सक्रिय रूप से वर्ग के कमजोर रहने सभी ओलंपिक संस्कृति को बड़ा समर्थन देखिए समुदाय पर स्थापित करना मात्र

0: सन्तुलित खाना खाई, व्यायाम शब्द गरी,
1: धूमपान मदिन सेतु नरही, तर भन नियन्त्रण गरी
0: आज निर्णय काली जीवन अधार निशा रोग से बाँची स्वस्थ।

सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यू डब्ल्यू एफ नेपालका साथै इपी कोरियालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान